0: अनाथ खाना का संग्रह नियमित रूप में आयरन कैल्शियम खरीद सुझाई स्वस्थ दायित्व सुरक्षित परिवार
1: रेडियो द्वारा सभी संदेश।

0: गरी अन्न बेलाबी साग सब्जी फल फूल सहित पोषण पूरक खानाले बच्चा आमा तन्दुरुस्त गराए। पूरक खाना संसद दुई वर्षसम्म स्थान पाउन जाने गरी।
1: रेडियो कुमारा एफएमद्वारा चलचित्र जारी सन्देश।
0: Out!

0: चढ़े गुरुबाबा। संध्या सवा छ बजे हमार संदेश में अपना स्वागत बाम कुमार से उत्पादित हमार संदेश राजापुर जानकी गांव पालिका बांके प्रसारण बीतगा। हमार संदेश का बुनिकारी मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक मसे बांसपति छात्रिया नेपाल पत्रकारिता तारीफ शुरू बांसपति छाने वाटर काम हरेर पूजा बांसपड़ी में विपद जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण संबंधी मत्स्य उदाहरण अंतिम उद्यम कार्यशाला निमजल दुई वर्ष पांच फेरी अस्पताल में सीटी स्कैन सेवा फेर संचालन योजना पत्र निपाल मुख्यमंत्री चेतनारायण आचार्य का निर्देशन व आदिवासी जनजाति आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा में पेश। भारतीयको बाँसबारीमा चार दिने निशुल्क मोबाइल पत्रकारिता तालिम आज से शुरू हुँदा रेडियो प्रभाव एफएम बाँसबारीका आयोजनामा संचारित तालिममा आधुनिक संचार प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग प्रति मोबाइल मसे समाचार संकलन सम्पादन द्रुत रूपमा सम्प्रेषण कला सिक्न दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न उद्देश्यले मोबाइल पत्रकारिता तालिम सञ्चालन गरिरहेको। मोबाइल पत्रकारिताको प्रयोगको प्रभाव पाचक समयमा टेक्नोलोजीमा भर्ती गर्न उसले पत्रकारितामा रुचि राख्नु रहेका व्यवहारिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न लक्ष्य सहित तालिम आयोजना गरिएर रेडियो गुरुबाबा एफएमको स्टेशन म्यानेजर पुष्पा चौधरी जानकारी दरबाजी तालिममा रेडियो गुरुबाबा एफएमका कार्यकारी निर्देशक एकनाथ चौधरी वर्तमान संसार क्षेत्रमा मोबाइल पत्रकारिता भारत आवश्यकता यहाँका प्रभावकारिता तथा भविष्यका सम्भावना बारे प्रकाश पार्दा। तालिमको पहिलो सत्रमा स्टेशन म्यानेजर पुष्पा चौधरी समाचारका परिचय इतिहास समाचारको प्रकार समाचारका संरचना तथा प्रभावकारी समाचारका लेखनका आधारभूत ज्ञान बारे सहजीकरण प्रतिभागी विषयक्रम प्रशिक्षक अमित चौधरी मोबाइल मसिक गुणस्तरीय भिडियो खिच्न विधि भिडियो सम्पादन आवश्यक मोबाइल एप्सको प्रयोग तथा डिजिटल पत्रकारिताको व्यवहारिक पक्ष बारे प्रशिक्षण विधिबाट तालिममा बाँसबारी नगरपालिकाका 16 जना प्रशिक्षणार्थी सहभागी रहनबाट तालिम मसे सहभागी हुन मोबाइल उपकरणको प्रयोग मसे गुणस्तरीय समाचार उत्पादन किचिओर सामग्री सहित छत्तको प्रभावकारी रूपमा सूचना सम्प्रेषण गर्न व्यवहारिक सिट प्रदान गर्न आयोजक जनाइरहेका चार दिनसम्म सञ्चालन भइया तालिम साउन 22 गते सोमबार इन्जनाबाद बाँसबारी नगरपालिका वडा नम्बर 4 नेवाटा गाउँमा शरीरी पूजा कैलिबा धान बालीमा रत्नाको किरानी लागस पानी नाली सप्रसमा उद्देश्यले हरित पूजा भइरहेको धानमा रत्नाको किरा गान्धी प्रतिमा लगायत सत्र किरा फगाइन गाउँका सुरक्षा देउतालामा थर्मामा जाख सामूहिक पूजा पारिने कर्णक नमाटा गाउँको वर्ग राम तीर्थ थारु चार चैत्रबाट नमाटा गाउँका देशमन्त्र गुरुवा कालीराम थारु केशवका बुद्ध सिंह थारू गाउँका किसानका उपस्थितिमा गाउँका सक्षय देउता परिवार अथवा भूमिदेवका विधिपूर्वक पूजा गर्नबाट नेवाटा गाउँमा 1,270 रुपियाँ हरित पूजाका सम्मानमा खर्च विराट वर्ग रामकृपाल थारू पटोलेबाट थारू गाउँमा हरित पूजा गर्नुपर्छ खेतीमा कोरोन मेरिक रोग निलग्न विश्वास रहता वर्षा दिन बिहान देशभन्दा दुधकुश पानी खेल बनाउन क्षेत्रमा पानी लग्न शेषकुण्ड क्षेत्रमा जैन हो धान पानीमा रोकिरहने लग्न धार्मिक विश्वास र टिहाल्दा बर्खामा खेतीमा विश्वास आगा धुरिया पूजा हो पाछा मन्त्र हरिहरी पूजाका दिन देशभन्दा गुरुवा सुनौ टिराका मन्त्रमा झन मादल पार्छ थारु समुदायमा नाचगान खुल्ला हो नाचगान गर्न बाँसबारी नगरपालिकामा विपद जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण कलापना एकक मस्य उदाहरण अन्तिम रूप दिनाग्रस्तीहरूलाई आज कार्यशालादेखि बाँसबारी नगरपालिका कार्यजना र पाकिस्तान इंटरनेशनल नेपाल का आर्थिक सहयोग में फेरी वार्ता करने विशिष्टता समूह विद्युत समन्वय में कार्यशाला भेटी रखो। कार्यशाला का उद्देश्य जानकारी देते विद्युत कार्यकारी निर्देशक डमर सुनार
1: Thank you.

कहीं के कार्य कलाक मसौदा तैयार कर दिए कक्षारा छल पर लिखल सम्पन्न नहीं हुई छल फल पुनरावलोकन स्थलगत अनुसंधान लिखल मसौदा पूर्ण रूप पैदा कर पुनरावलोकन करे की परियोजना संयोजक खेम भंडारी।

प्रमाणीकरण गया स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशीलता तथ्यांग प्रमाणीकरण पूर्वक अनुमान आधारित पूर्व कार्य ढांचा विपद सुरक्षा आश्रय स्थल निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी छ प्रत्येक अन्तिम रूप देखकूप हर्ष मसौदा पाँचोरी नगरपालिका नबुझेवा कार्यशाला गोष्ठीमा पाँचोरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख उप प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सपूर्णका अध्यक्ष कार्यपालिकाका सदस्य बीग्रुपका कर्मचारीवर्ग सहभागिता रहेर पर्ट्यामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा खैयाल फेरक आफन संघर्यमा खैयाल कर्णक अभियोग हत्याका आफ्नो संघर्यको हत्या कर्णक अभियोगमा प्रहरी निष्कर्षीय गोविन्द जयसिंह पक्राउ दलमा टोटीका शिखर नगरपालिका चार बिनाबी स्थायी घर ओखा हाल ठाकुर बाबा नगरपालिका सात चारी कौडी पैतृक जयसिंह ठाकुर बाबा नगरपालिका नौ बेतहानीका 27 वर्षीय आसाराम थारूका हत्या कर्णक कारोबार पहिलक साउन 15 गते रातको करिब 3 बजे ठाकुर बाबा बजारमा लुप्त 00101028025 नम्बरका 400 सीसी एलएस मोटरसाइकल दुर्घटना पाँचवा खैर थारूको बजारमा ठ्यार खर्च बिना दलले जैसी कठुवा मोटरसाइकल बजारी हो मृतक मालका दौरी प्रयोगै हत्या कलक प्रहरी अनुसन्धानमा से कुराको सब साउन 17 गते ठाकुर बाह्रसे उजर पटुवा उखर चैन सिचाइका नारीमा ठ्यार अपराध घटनास्थलमा से प्रहरी हत्यामा प्रयोग मृतक पटुवा मालक दौरी मोटरसाइकल प्रचारी तथा चप्पल बरामद गर्दा जिल्ला प्रहरी कार्य प्रज्ञाका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायक परिषदले पोहराका अनुसार गोविन्द जयसिंह विरुद्ध कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी 7 दिनको म्याद थप्दै अनुसन्धान बितेर चलाइरहेको बाटेका फेरी अस्पतालमा करिब 2 वर्षसे प्राविधिक समस्याका कारण बन्द होला सिटी स्क्यान सेवा मर्मत सम्भार पार्षद हेडुसा सञ्चालन रहेका फेरी अस्पतालको प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर नवीन दर्नाल सेवा हेडुसा सञ्चालनसँग लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हजारौं विपन्न तथा गरिब दरमियान अस्पतालमा संस्थामा ओस्टरमा सिटी स्क्यान सेवा पहिला पटेलबाट आघात दुर्घटना तथा सात पटकमा मामला शुल्क तिर्खा निजी स्वास्थ्य संस्थामा सिटी स्क्यान कराए पर्न बाध्यता हुन उहाँबाट डाक्टर धनान अनुसार अस्पतालमा वातावरण सेवाका फेरोसा सञ्चालन अपुग जनशक्ति व्यवस्थापन आवश्यक स्वास्थ्यको कारण थप तथा प्रथा सुधारीकरण हुन प्राथमिकताका सँग आग्रह गरेका फेरि अस्पताल विकास समितिका कार्यपालक सदस्य डाक्टर प्रसाद अधिकार सेवा सञ्चालन संग्रहे पर्दिया सुर्खेत दाङ लगायत लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिमका निर्मिक जिल्ला मुसैना टेमर सेवा मिल्दा हो आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिक विशेष राहत पुग्न पटेलबाट अस्पताल विकास समिति र अस्पतालका सेवा विस्तारका लागि संघीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक जनशक्ति हो सर्वसाधारणको माग गर्न जनाधिकार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनाराम आचार्य सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय हुन जिम्मेवारी पूर्वक काम गर्दै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निर्देश अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2082-83 मन्त्रालयको मातहतका निकाय प्रदत्त कार्यका समीक्षाका राज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आयोजित वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा महाविद्यालय भवन निर्माण लगायत शुरू भएका योजना समयमा सम्पन्न योजना तप्ने पारा निर्देशन दिएर मुख्यमन्त्री आचार्य तालिम गोष्ठीको सेमिनार सके प्रत्यक्ष उपलब्धि दिन कार्यक्रम हुन प्राथमिकता दिन साउन भदौभित्र कार्यविधि तयार गरेका उहाँसे कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भिजाए सम्पूर्ण खरस सेटमा योजना हुन फेरक आग्रह बढाए तथा 10 लाख रुपियाँ से उपलब्ध योजनामा ठेक्का प्रक्रिया अप्नाए निर्देशन दिनबाट 10 लाख रुपियाँ से कम लागतमा विद्यालय सम्बन्धी योजना पर कोटेशन मसे निरूख सम्बन्धित विद्यालय से सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्न उहाँका महामन्त्रालय निर्देशन आएको मात्र सबको निकाय हुन बजेट सही कार्यान्वयन
चरणों से सेवा उपलब्धि मूलक कार्यक्रम तथा स्व सेवा प्रभाव विशेष ध्यान देव अधिकरण समीक्षा कार्यक्रम प्रमुख सचिव कृष्ण प्रसाद काप्रीबु प्रदेश योजना आयोग अध्यक्ष डॉक्टर दिलीराज हरियाल लगायत सामाजिक विकास मंत्रालय का वार्षिक प्रगति का समीक्षा कर रहा यह समाचार प्रकाश गुप्ता पठाई बाट गान्तोक अभिमा आयोजित प्रदेश स्तरीय सड़क सुरक्षा कार्यशाला गोष्ठी लुम्बिनी प्रदेश का मुख्यमंत्री चेतनारायण आचार्य युवाओं सचेत अनुशासित और जिम्मेवार बनाए क्षेत्र से सवारी दुर्घटना में उल्लेखित अभियान सीखना पर प्रेरित लुम्बिनी प्रदेश में सबकुन से झार मोटरसाइकिल दुर्घटना होना वो 16 से 30 वर्ष उम्र सम्म कई बार झार प्रभावित व्यक्ति विद्यालय तह से सड़क सुरक्षा शिक्षा संघ प्रदेश और स्थानीय तह बीच समन्वय लागू औषध नियंत्रण गुणस्तरीय सड़क निर्माण सवारी नियमन का कड़ाई का संग पालना मजूर के नकृत दान पार्टी का तीन प्रस्तुत रूप में देखने दुर्घटना ख्याल पिलाते कार्यक्रम में प्रदेश नीति तथा योजना आयोग का होकर पर्सन शंकर सिंह धामी आर्थिक वर्ष 2077-2081 सम्म लुम्बिनी प्रदेश में 7,866 सवारी दुर्घटना विभिन्न 2,525 जना जान विभिन्न 5,416 जना गंभीर मुखियर 6,804 जना सामान्य खैर विरोध जानकारी दिलाकर दुर्घटना मध्य 6,200 घटक हुई दुई पहिया का सवारी संलग्न करीब 57% दुर्घटना मोटरसाइकिल में संबंधित रहो 90% दुर्घटना चारा कला प्रदान का कारण होना विश्लेषण प्रस्तुत कर कार्यक्रम में औद्योगिक पूर्वाधार विकास मंत्री रत्न बहादुर खत्री आंतरिक मामला कानून उद्योग तथा यातायात मंत्री भंडारी लाल खहित प्रमुख सचिव कृष्ण प्रसाद काप्ले लगायत सरकार वाला निकाय का प्रतिनिधिगण का सहभागिता होगा यह खबर दाङसेन प्रकाश गुप्ता पठाई सरकार आदिवासी जनजाति आयकर छैठ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2081-82 प्रतिनिधि सभामा पेश गरेर प्रतिनिधि सभाका आज कक्षमा प्रधानमन्त्री वरेन्द्र शाहको श्रेष्ठ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सुविता गौतम उपप्रतिवेदन सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न गइथे नेपालको संविधानको व्यवस्था बमोजिम संवैधानिक निकाय आफन वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति मार्फत सरकारमा बुझाइन हो सरकारको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्न प्रावधान रहँदा राष्ट्रिय समाचार सँगै हाम्रो सन्देशको समय भइलागेका हाम्रो सन्देश भइनासे पहिला मुख्य मुख्य सन्देश एकधारा बास प्रहरी महादेवी गुरुबा एफएमका आयोजनामा चार दिनिया निशुल्क मोबाइल पत्रकारिता तालिम आशिष रोहिता को सरकार आदिवासी जनजाति आयोग छैठा वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2081-82 को प्रतिनिधि सभा में पेश कर बजे नेपाली भाषा खमा सन्देश खरिने बाटी अब समग्र समाचार कक्षका सकुसङ्ख्या हुन्छ प्राप्ति समय गौरी शङ्करसँग मनकुरा फेरि भाइटु फेरि गुरुबा एफएम सुन्दै रवि Say goodbye.

0: काही जर काही पहिला नकल उपचार केंद्र खाणं पाहा काही समस्यावर घेतला अधिकारी आवश्यक जानकारी दिला नेपाळ सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपालका साथै नीति कार्यालय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सार्वजनिक अनुसन्धान केन्द्र सम्बद्ध सहकारीमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
1: बाल विवाह कानूनी अपराध हो, यसलाई आजैबाट रोक्नुपर्छ।

0: पदार्थ को श्राव भविष्य निर्माण करने समय हो। लागू पदार्थ को एक पटक को प्रयोग में पनि गलत गर्न सिक्छ भने पढाई में असर पुर्याउन सक्छ। साथी को दबाव में होइन आफ्नो सपना को पक्ष में निर्णय गरौ। पदार्थ ले खुला कुरा गरौ। समाधान लागू पदार्थ होइन, लागू पदार्थ बाट टाढा बसौ। स्वस्थ र उज्यालो भविष्य खोजौ।
1: रेडियो गुरुबाबा एफएम द्वारा चर्चित मजारी सन्देश।

வந்து காம் குறைப்புசா அவர் ரோயல்டி சம்பளம் தவிர்க்கிறான் பரவாயில்லை ஸ்பஷ்டமா தந்த சைத வியவஸ்தித் பண்ணா சம்பளத்துமே கையா பம்பியர் பண்ணு பசா கருணை தகரா முன்னர் சகமதி ரசோ கரி வாட்டா சுபாதான் கொசுனே திருப்பாலின் ஹித் பம்பேசா அவர் கவர்ஷன் பசிராம் வாட்டா देशमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव सुविधा उपभोक्ताले खाने सिलिन्डर बुझाएर पनि सातदेखि दस दिनसम्म पार गर्नु परेको छ। ग्यासमा प्रकरण घर परिवार होटेल व्यवसाय तथा घरमा बस्नेहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। कतिपय प्रमुखता दाउरा प्रयोग गरेर खाना पकाउन बाध्य भएका छन्। सधैँ लमजुङ गोर्खा लगायत

0: ciudad tan limitada al visitar la prueba de que somos que son políticos más razones que espera tribunal visto vivales etcétera sacar la parte más de cosa tanto que discurso para ir a la parte de cosa y eso que hemos creado motivos sudan por un rey son sobre que tenemos कुतना सभी सेना हिंदू और मुस्लिम समुदाय के अन्य तहों संगल छुट्टा छुट्टी बेतवा पकड़ेगा थी इसे कुछ तो विधि सभा का विपक्षी दल हमले संसारी लगाया का जिला में भाई को सामाजिक सद्भाव विरुद्ध को घटना को सहमति कानूनी कार्रवाई सरकार को ध्यान रखना कराया था तीन दिनों को मृत्यु होने का भी भाई को दुई समुदाय को तरफ भी सरकार का तरफ बाटा यह हमारे सुपरगुरु गौरवी को तीन तीनों वित्तीय सहमति अचरण सर कार्यान्वयन को मार करेगा मन ये को पांगले सांसद गुरु प्रसाद बराल ने कागज को सहमति ने मात्र इतिहास अंत पर अनुसार के हमें सरकार विरुद्ध पक्ष में मिले गर्म पर मार कर दिया हो
1: आरोपित ना कितने बोले का काम करो लागे का छोट करो तीन हाल करो अस्पताल में छटपटाई नहीं करिए हम लोग जो पवस्ता मैं उनसे चुन लेता हूँ मुझे घर का परिवार मैं देख लेता हूँ जेब में आस्था रखता हूँ इसलिए उन्हें उनको हमला जित

मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। तो आपन चला पन्न बना रची और पुलिस लाइबे मैं

अब बाजू बाजार किसान सबके पके शिकायत के तैयार है सर, अब सब कुछ लगेगा तो यहाँ पर व्यापार की भाव अनुसार सोचा जी तो रखे ठीक बात है दीदी, अब हमें इधर हो जाएगा आप सोच हमने पांच सौ कुछ डॉलर नेपाल में से जाकर राष्ट्रीय बाजार किसान सबके लगे सिद्धार्थ की तरह ना